0: माल किधर से आया?
1: पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई? जी
0: तुम फिर इधर आ गया? बुलाओ पुलिस को।
1: पुलिस को नहीं, पंडित को, काजी को, पादरी को।
0: हा? क्या मतलब?
1: मतलब ये कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं।
0: तुम हमसे शादी बनाएगा?
1: बिल्कुल बनाना मानता। लोग अपनी दुल्हन की सेज फूलों से सजाते हैं और हमने नोटों से सजा दी। अब भी यकीन नहीं आता?
0: आमीन। तुम हमको उल्लू तो नहीं बनाता?
1: अगर किसी को दुल्हन बनाना, उल्लू बनाना है तो ऐसा ही समझ लो।
0: यार मस्ती छोड़ो ना, तुम सच सच बताओ हमसे शादी क्यों करना मांगता है?
1: देखो, तू भी चोर, मैं भी चोर, दोनों मिलकर 12 बच्चे पैदा करेंगे।
0: 12?
1: हाँ, चीपर बाय द डजन। कोई गिराकट होगा, कोई चोर होगा, कोई उचक्का होगा, कोई डाकू होगा, और ये सब मिलकर हमको माला माल कर देंगे।
0: सच?
1: हाँ, और जानती है, ऐसे माल पे इनकम टैक्स भी नहीं लगता।
0: आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर पार्टनर, 6 बच्चों से काम नहीं चलेगा?
1: काम तो चलेगा, लेकिन बेचारों को ओवर टाइम करना पड़ेगा, इसलिए एक डजन ही रहने दो।
0: अच्छा,
1: मंजूर है?
0: डन।

0: मैं
1: आप यहाँ कैसे?
0: जैसे ये सब
1: यानी कि आप भी?
0: जी हाँ, ऐसी वैसी
2: खुसुर फुसुर वाली।

0: हमें देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।